गुरमुख सतगुर दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा पर गुरमुख सतसंगत दी कुखों जन्म लैंदा। सतसंगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनूं गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है। गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है। गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है। गुरमुख नाम दान इशनान। गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसे पासों सुगंधी आ रही सी किसे ने आके पुछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है। उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेखे।

बंसरी बजदी बजाउण वाला बंसरी बजाउंदा है वजाई जांदा बंसरी वजी जांदी बजाउण वाला वजाई जा रहा है बजाउण वाले नु बजाउंदियां बजाउंदियां ना ता खाण दी भुख ना कोई प्यास दिखाई देंदी ना पता चलता इसने आराम भी करना बंसरी वजदी जा रही वजाउण वाला वजाई जा रहा पर इउं लगदा हुण तां बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई सतनाम श्री वजाउण वाला बंसरी विच ही गवाच गया वाजा वजाउण वाला वाजा वजाउंदा सी वजाउंदियां वजाउंदियां उह लग्या हुण तां वाजा वजाउण वाले नूं वजाउण लग पिया वजाउण वाला गवाच गया कोई शब्द का अभ्यास करता सी गुरु दे दिते गुरमंत्र का अभ्यास करता सी कोई गुरु दे दिते हुए शब्द का अभ्यास करता सी करदा ही गया करदा ही गया करदा ही गया इउं लग्या हुण तां शब्द अभ्यासी नूं अभ्यास कराउण लग पिया जो सतनाम श्री वाई वो अभ्यास करन वाला गुर शब्द विच ही गवाच गया समा गया अभ्यास करन वाला जीरो बन गया अभ्यास करन वाले दी मैं मर गई जिस दी मैं मर जाए वो तो कदे नहीं मरदा तो पु सतनाम श्री मरदे ओ ने जिन्हां दी जीवन विच मैं नहीं मरी वो तो जीउंदा ही मर जांदे ते जिन्हां ने जीवन विच गुर शब्द का अभ्यास करके जिन्हां दे जीवन शब्द ने अभ्यासी नूं अभ्यास ते लगा के उन्हां दी मैं मार दित्ती वो मुड़ के कदे नहीं मरे शब्द मरो फिर जीव सद ही बहुर मरन ना कोई अज सतगुरु ओही गल कह रहे जेड़े गुरु दे शब्द विच समा गए उन्हां नूं मरिया होया ना आखना जब सतनाम श्री कदे भुल के भी किसे गुरमुख नूं ना कहना कि गुरमुख मर गया मरदे ने मनमुख जपो सतनाम श्री वाहिगुरु गुरमुख नहीं मरदे मरदे ने

माली दी नजर भी नहीं। आप हुदरे बूटे उग पेंदे, एक दूसरे दे अंदर इस तरह फस जांदे ने, रस्ते दे राह भी रोक लेंदे ने, जंगल दे राह भी रोक लेंदे। इस तरह बेतरतीबे बूटे संगने उना दे अंदर खतरनाक लुटेरे भी लुके रहिंदे, खतरनाक जानवर भी।

कि हे निरंकार साडे कलयुगी जीवां दा सुभाई ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साडी रख्या करदा है, हर वेले साडे नाल है, जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां, वो सानू याद नहीं रहा, असी भुल गए हां उसनू। जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों, उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया, जिना ने साढ़े नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लिया, जेड़ा हर वेले नाल है उनू विसार छड्या। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तां स्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर वसै। ए रेत दी कंध है, ए जेड़ा साडा शरीर है ए रेत दा घर है। पहले बचपन फिर जवानी, जवानी ने बचपन नूं खा जाना है, ते बुढ़ेपे ने जवानी नूं खा जाना है, ते काल ने बुढ़ेपे नूं खा जाना है। ए रेत दा घर है, ए डिगदियां डिगदियां एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। उस घर विच बह के भी असी कितने केल कर रहे हैं। आ संसार भी एक रेत दा घर है, जिदे विच बह के असी तरह तरह दे केल कर रहे हैं। वेखदे हां इन्हां अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए हन, पर असी अपने आप नूं समझदियां भई असी नहीं जाना। हजूर कहिंदे ने बलुआ के ग्रह भीतर वसै, रेत दे घर विच वस रिहा है। अनद केल माया रंग रसै, अनेकां केल करदा माया दे नाल, ओह भी रस मान लवां, ओह भी स्वाद मान लवां। हजूर कहिंदे ने इस शरीर लई सब कुछ कर रहे हैं, जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उस परमेश्वर का भी ध्यान धरिया कर, उस परमेश्वर का भी सिमरन करिया कर। जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उनू तू भुखिया ही मार छड़िया, अज तक जो कुछ तू कीता अपने शरीर लई कीता, आत्मा लई कुछ नहीं कीता, आत्मा नू कदे कीर्तन का भोजन नहीं दिता, सिमरन दा पदार्थ नहीं छकाया, गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, सत संगत दी सुगंधी कदे नहीं लाई उस आत्मा नूं। तू शरीर लई तां तू बहुत कुछ कीता, इस लई बलुआ के ग्रह भीतर वसै, अणद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर माने मने प्रतीत। ए समझदा ए प्रीतां मेरियां सचियां प्रीतां हन, पर काल ना आवे मूड़े चीत, ए नहीं पता। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु दा सदा आ जाना है, काल ने आ जाना है, ये शरीर तां मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। इसलिए भाई उदा नाम जपया कर, उदा सिमरन करिया कर, जिस वाहिगुरु ने तैनू इतनियां बख्शिशां कीतियां हन। गुरु अर्जन देव पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन, ते आप कर रहे हन। जिस तरह मास्टर पहला आप पहाड़े बोलदा है फिर विद्यार्थी बोलते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह भी साडे ते उपकार करते हुए कहते हैं आओ भाई तुसी भी अरदास करो, मैं भी तुहाडे लई अरदास।

अपने भगतां नूं कसवटी ते ला के देखदा है। अज सत दिन होर भी तेने सेवा करदे आ, जदों अठवां दिन आया ना घरों टुरन लगी ते छोटे जे बच्चे ने आखिया, मां राती मेरे सुपने दे विच बापू आया सी। आखण लगा, पुत्र तैनूं भी मैं अपने कोल लै जाणा, तेरी मां तेरा ख्याल नहीं दे रखदी, कल्ले नूं छड के तुर जांदी है, तेरा ख्याल नहीं रखदी तेरी मां, इसलिए मैं तैनूं अपने कोल लै जाणा। मां ने आखिया, पुत्र ऐ

पुत्र नूं दुध वाली बोतल पकड़ाई, टोकरा चुकिया ते सेवा वास्ते चली। पुत्र ने रो के आवाज मारी, ए मेरी अम्मा, मरण वाले दी आखरी इच्छा सारे ही पूरी कर देंदे ने, तू सेवा ते चली है, पता नहीं तेरे आन तक मैं होवां जा ना होवां, मेरी आखरी इच्छा ते पूरी कर दे। जद छोटे जे बच्चे ने इन्ने बचन आखे, मां दा हिरदा कम गया, पुत्र की तेरी इच्छा है? है मेरी अम्मा, एक बार घुट के मैनू छाती दे नाल ला ला, किते मैं मां दे प्यार तो बांझा ना मर जावां, मां वाला प्यार दे जा। मां दे अखां विचों हंझू घिर आई, रो पई, ऐ पुत्रा ऐ गल है। पुत्र दी बांह पकड़ी, आ लै अज मैं तेरी बांह धन गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पकड़ा के चली। जिन्हां दे घर ते उन्हां दी रहमत हो जांदी है, ऐ मेरी बच्चा, उस घर दे अगे दी भी जम नहीं जे लंघदा, तू रती भी डरी ना, तेरी बांह गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पकड़ा के चली है। ऐ मेरे पुत्रा, रता भी डरी ना। किड्डा भरोसा दे के मां चुर गई है सेवा वास्ते, सारा दिन रज के सेवा कीती। जदों शाम नूं आई ना अपने घर, आके घर दा दरवाजा खोलिया, की तक रही है वो छोटा जिहा बच्चा, कई महीनिया तो मंजे ते बिलक रहा सी, बीमारी नाल तड़फ रहा सी, बेड़े दे विच नसा फिरदा है। मां देख के हैरान हो गई, अखां मल मल के देख रही है, पुत्र मैनू ते यकीन नहीं आउंदा, ऐ किवें हो गया, ऐ किवें हो गया, इन्ने महीनिया का तू मंजे ते पिया है ते एक दिन दे विच तू ठीक हो गया, यकीन नहीं दे आता। छोटे दे बच्चे ने आख्या, मां तैनू नहीं पता, मैं ते मर

इस गरीबणी दे घर आप चल के आ गया। तन है तू, तन है तू, मां दे मुंह चो निकल रहा है। मां वो कौन सी, तू जानदी है उसनु? मां ने छाती नाल लाया पुत्र नू, बैराग विच भिज के आखिया, पुत्र रहमतां दे मजस्मे, तन गुरु अर्जन दे पातशाह आप तेरे मुख विच जल पा के गए ने, तेनू दोबारा जान दे के गए ने, आप बख्शियां करके गए ने। ऐ सतगुरु जिसकी बास्त सोई ले जाएगा, तू किसनू की देना है, किसे कोलो की लेना है, देहे लेहे एक तू ही, दिगर को नहीं। अब बाबा जी बाणी में बख्शिश कर रहे हैं, देन लेन वाला वो एक प्रभु है, किसे नू किन्ना देना है, किसे कोलो किन्ना लेना है, वो ही जानदा है। ऐ जीव एमी थोड़ा जिन्ना दुख आ जावे एडे बड़े पलांबे ना दया कर, कदी भी उसनू माड़ा ना आख्या कर, कदी भी उसदे नाल रोस ना करया कर। सतगुरु

उस वेले वो अकाल पुरख किसे न किसे ने इस संसार की पीछ कलयुग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी।

निर्धन को पले, निर्धन को पले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, अगां अगां ज्यो प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन नूं पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जिहड़े बंदगी वाले महापुरश सारी जिंदगी जिन्हां ने लिखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने। उहनां दा पालना किन्ना कु उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे भोगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के ला ले, लाउणा किसे किसी गुरुद्वारे की कार सेवा लई देंदा, वो भी गुरु नूं पहुंच। लंगर लई देंदा, वो भी गुरु नूं पहुंच। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंच।

अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिता जी मेरे डंकारी वीर नू ना मारो, मेरे रब्बी वीर नू ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपये बदले मेरे निरंकारी वीर नू कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नू चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकली, कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे कारुच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन स्नान किया, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच ही मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैन दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा सी, अज भी ओही भैन वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा। तली उत्ते मक्खन पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाड़ा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दे। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह। हजूर कहन लगे हां मरदाने यार तारा भी कई तरह दियां हैं, एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जिहड़ा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा ओ ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विनदी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदानी है नेत्र बंद कर छेती पहुंची। मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा आ खुश होई वारी। पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या मरदाने ए पढ़ की।

अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहा है सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहिगुरु मरदाने हुण बोली ना बेवे नानकी दी आस पूर्ण करनी हजूर आए अगौली आके बेबे नानकी दी हथां तों मक्खण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सुरत कन्ना विच लै के ए आवाज तो मेरे वीरन दी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हाथ बेबे दा सिर अपने हथां ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सी रो पई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन सगनू संत बनाया है वली कनारी दा मान तोड़िया है पत्थर पंजे लगा के मोम करन वाले तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नू मिले हो के नहीं बेबे पहला तेरे कोल आया मां नू भी मिलो हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुध पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गलुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो श्री भाई नेत्र खुल गया अज माता तृप्ता नू 12 सालां दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो श्री भाई गुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलियां वाली गंढ लियांदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्तर नू इक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री भाई वेख वेख बिछड़दी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार जे नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिल तेरे प्यार दीवाने होए फिरदे हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखां खुल गई मेरे अगे मत्था न टेक मैं कलयुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखनी कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो के नहीं नहीं पिता जी फिर राय बुलार नू भी मिले हजूर सुर पे अज सारियां नू दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पिया कहंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जप नाम दे सदके नाम ही मिल जाएगा तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े ते प्यार है एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां रुसले जंगल ही जंगल सी बाबा जी ने इथे बख्श कीती पर जिहड़े आशिक सन ओह रोज पहुंचदे सन प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तों दिल्ली दर्शन करन वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मरदे सन उन्हां कोल ठहरे अमृत वेले बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते जाण लगे
تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی کہنے لگے ہرچند سیاں اسی بھی نال چلیں گے جی صدقے چلو جی کار اچ بیٹھے آ گئے اگے کیرتن ہو رہا ہے امرت ویلے آسا جی دی وار دا تو بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہندے سن براگن لگائی ہے ہن بھی کر لو درشن براگن لگا کے مستی جھوم رہے ہیں تے پیاری سات سنگت بارش شروع ہو گئی ایوان نہیں سی کوئی اتنے چھت نہیں سی باہر ہی دیوان سجیا ہوا سی تو بابا جی نے اشارہ کیتا بھائی کیرتن کرن والے اتنے کپڑے تان دو تان دیتے تے بابا جی نے راگی سنگھ نو کہا اے تو کام پڑھو کہڑیاں آپاں بھی پڑھ لئیے

इच्छा नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

0: विधान जग पुरो
1: करुणालय है
0: हरतालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है।
1: हे प्राणनाथ गोविंद
0: कृपा निधान जग पुरो हे संसार ताप हरणे करना में सब दुख हरो।